0: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल
1: लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाक बन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जड़ीबुटी को शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा
2: कुराही को लागि आधिकारिक विक्रेता भुसाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराही दान फोन नम्बर 082-581-210 थप सम्पर्क का लागि हिमालय स्टोर बाल मंदिर अगाड़ी मिरज स्टोर सब्जी मंडी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसंचार देखि पश्चिम तर्फ

0: छपन्न शून्य एक्काईस र होटल दाङजारी नजिक जीवन चौधरी। मोबाइल नम्बर 98478 65 375।
1: शुद्ध पानी पिउनुहोस्, स्वस्थ जीवन जिउनुहोस्।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्य पश्चिम FM 91.4 MHz।

0: सुरक्षित जीवन जिउन जीवन बीमा जरुरी छ। रिलायबल लाइफ सधैँ भरिलाई।
1: मध्यपश्चिम ट्राइन चेक यति बेला दिउँसोको एक बजेको छ।

0: सफर का मजा लीजिए हुजूर।
1: गाड़ी से कह दो चले तेज मंजिल है दूर।
0: अरे थोड़ा सफर का मजा ली।

0: फिर ना कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात।
1: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ।
0: अरे फिर ना कभी।